0: and lofty date palms with ranged clusters, provision made for men, and therewith we quicken a dead land. Even so will be the resurrection of the dead.
1: You are listening to the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman As-Sudais and Sheikh Saud Ash-Shurain.
2: Coming up next.
3: Please stay tuned for our next show, Daily Adhikar.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिद

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

और उनका असलह उनसे गिर पड़ा। जो बछड़ा बनाया गया था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसको रेजा रेजा करूंगा, फिर उसको जला दूंगा और फिर उसको पानी में बहा दूंगा। तो वो जो बछड़ा बनाया गया था उसको तो तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इनकी तौबा के लिए ये जो अल्फाज हैं बिल्कुल वाज़े हैं कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, तूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम। अनफुस नफ्स की जमा है, नफ्स जान को कहते हैं, बुत में जान नहीं होती। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तौबा के लिए ये करना होगा। फताबा अलैकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर। देखिए जैसे कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका कफारा क्या है, आगे पढ़ेंगे आप कुरान मजीद, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अल्लाह के हुक्म ही से कत्ल करना था। देखिए बाज़ औक़ात इंसान का जुर्म इतना बड़ा होता है कि उसके लिए इंसान को एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। ये भी एक आजमाइश थी उनके लिए, क्या अपने प्यारों को कत्ल करना, क्योंकि जुर्म बड़ा था ना। तो बहरहाल यानी कि ख्वाह वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इससे बाज़ मुफस्सरीन ने यह कहा है कि जो मुजरिम थे उन्हें कत्ल किया उन्होंने जो बच गए थे, और बाज़ ने कहा कि वो तो एक तरफ थे और ये जो मुजरिम थे यही एक दूसरे को मार रहे थे। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तौबा जो है उस वक्त कबूल होती है जब इंसान की तौबा की नीयत हो। तो पहली शर्त यह कि नीयत खालिस हो तौबा की, सिर्फ टल टलाओ ना हो, काम चलाओ ना हो। दूसरी बात यह है कि गुनाह छोड़ दे इंसान, उस पर नदामत हो। तीसरी बात यह कि आइंदा ना करने का इरादा हो। फिर यह कि जो गलती की उसको कंपनसेट करे, किसी का हक मारा है तो उसको दे। और तौबा कबूल होती है मौत का फरिश्ता देखने से पहले तक, किसी को मौत का फरिश्ता नजर आते फिर तौबा नहीं कबूल होती। जैसे फिरौन ने भी तौबा की थी, लेकिन कब की थी, जब वो डूब के मरने लगा था। उसने कहा था वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमान हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम मुसलमान होते हो, हालांकि इससे पहले तुम इस्लाम नहीं लाए। तो बहरहाल बात यह है कि इस आयत से हमें यह पता चलता है कि बाज़ गुनाह बहुत बड़ा जुल्म होते हैं, और जुल्म का फिर बदला इंसान को देना होता है, और बाज़ गुनाहों की माफ़ी सिर्फ उस सूरत में मिलती है जब इंसान उनका कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। बनी इसराइल के लिए कफ़ारा कत्ल नफ्स था, लेकिन हमारे लिए मुख्तलिफ गुनाहों का कफ़ारा हमें बता दिया गया। जैसे कोई कसम खा के तोड़े तो उसका कफ़ारा क्या है, अगर कोई रोज़ा तोड़ दे तो कफ़ारा क्या है, ये वक्त के साथ साथ आगे आप सीखेंगे। वैस कुल तुम या मूसा लन्नो मिन लका हत्ता नर अल्लाह जहरतन, जब तुमने कहा ए मूसा हम तुम्हारा एतबार नहीं करते जब तक कि हम खुद अल्लाह को सामने न देखें। हुआ यह कि मूसा अलैहिस्सलाम जब किताब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब है, तो कौम ने कहा हम नहीं मानते जब तक हम खुद ना अल्लाह को देख लें। वह अखजत को मुस्सायकत, उस पर अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हुआ और उन पर तुम्हें बिजली ने पकड़ा, चमक और कड़क के साथ बिजली उन पर गिरी। वन तुम तंजरून, और तुम देख रहे थे क्या कि वो आ रही है बिजली, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले चमक होती है और उसके बाद गरज होती है और फिर वो गिरती है। तो यहाँ क्या देख रहे थे तुम, बिजली का चमकना और फिर उसके बाद कड़की और गिरी और वो सारे मर गए। वह अंतुम तंजरून, बाज़ रिवायात में ये भी आता, बाज़ लोगों ने इसकी ये भी तफसीर की है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की मुलाकात के लिए गए तो वापस आए किताब लेके, तो कौम ने कहा हम भी सुनना चाहते हैं आपने अल्लाह से कैसे बात की, हमें भी साथ ले चलें। 70 लोगों को चुना, कोहितूर पे ले गए, वहाँ जा कहने लगे नहीं नहीं हमें तो अल्लाह को देखना है। उस पर इनकी शामत आई। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि नाजायज़ मुतालबात पैगंबर से और अल्लाह से बसा औकात इंसान को मुसीबत में मुबतला करते हैं। तो पीछे हम पढ़ रहे थे ना कि इंसान पर मुसीबतें क्यों आती हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से। तो ये इस तरह के जो सवाल और मुतालबे थे ये मुसीबत का बायस बने। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि ऐ रब ये क्या बनेगा। सूरत अल आराफ 155 में आता है, ऐ अल्लाह अगर तेरी ये मशीयत थी तो आज से पहले मुझे भी और इन्हें भी हलाक कर देता, क्या आज तू इन नादान लोगों की बातों पर हमें हलाक करता है, यानी तू हमें ना हलाक कर इनको उठा दे। सुम्मा बासनाकुम मिन बादे मौतिकुम, ये कितना बड़ा इनाम है कि हमने तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो।

0: ये नींद नहीं थी उनकी या बेहोशी नहीं थी, वो वाकई मर गए थे। मौत मौत ही के लिए आता है, मौत नींद के लिए नहीं आता। और ये सब किस लिए नेमत याद कराई जा रही है? ताकि तुम शुक्र अदा करो। इससे यह पता चलता है कि इंसान अगर किसी ऐसी बीमारी या आफत या हादसे या मुसीबत से निकले तो उसे क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। वज़ल्लना अलैकुमुल ग़मामा, और साया किया हमने तुम पर बादलों का। ग़माम इस्म जिन्स है, एक बादल नहीं कई बादल, क्योंकि एक बादल का साया नहीं होता। वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। मन और सलवा ग़िज़ा के तौर पर। ये कहाँ उतारा? सहरा सीना में। अब समझ में आ रहा है ना कि जब फिरौन से निकल कर वो दश्त सीना में गए तो वहाँ कुछ खाने को नहीं था, कई हज़ार लोग थे, ना वहाँ कुछ उगता था, ना ही वहाँ पानी था, ना कोई मकान थे। एक नहीं दो नहीं 70,000 लोग किसी मैदान में पहुँच जाएँ तो वो क्या करेंगे? तो उस पर अल्लाह ने इन पर बहुत इनाम और एहसान किया, और वो क्या था कि उन पर बादलों का साया किया और मन व सलवा खाने को दिया। और क्या फरमाया? कुलू खाओ, मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको रिस्क दी हैं, अच्छी चीज़ें, उम्दा चीज़ें। क्या थी ये अच्छी चीज़ें? मन और सलवा, जो देखने में टेस्ट में जायके में अच्छा था। वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया। किसने? बनी इसराइल ने। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। किस तरह? कैसे? शुक्र ना करके, ना शुक्री करके। इस आयत से भी क्या पता चलता है कि अल्लाह चाहे तो सहरा में बादल भेज के साया कर दे। यानी जब अल्लाह किसी पर इनाम करना चाहता है तो वो ऐसी जगह भी उसकी मदद करता है जहाँ बज़ाहिर कोई असबाब और वसाइल ना हो। जितने भी एहसान बनी इसराइल पे, इन सब में आप एक ही बात देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला इनकी ऐसे तरीक़ों से मदद करता है कि जो आम असबाब के तरीके नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने लिए शहद को हराम किया था तो अल्लाह सुबहान तआला ने आयत उतारी थी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए पैगंबर आप उन चीज़ों को क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दी हैं? तो उनको हराम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शरई उज़र हो तो फिर हो सकता है। मसलन एक मौके पर जब कहत पड़ा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर चीज़ खानी छोड़ दी थी, सिर्फ रोटी को तेल में डुबो के खा लेते थे, हती कि उनका रंग स्याह हो गया था। लोग कहते कि आप क्यों नहीं खाते? तो कहते थे कि अगर मैं खाऊं और मेरी रियाया न खाए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि ये भूखे मर रहे हैं और मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूं। तो ऐसे मौके पर अपने आप को महरूम करना इसलिए कि औरों के पास कुछ नहीं, वो एक वजह है। लेकिन बिला वजह सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे, सिर्फ ये सोच के कि मैं ज़्यादा नेक हूँ, ये कोई नेकी और तकवा नहीं है। लेकिन बहरहाल खाने में इतदाल अपनी जगह है, वो ज़रूरी है। वह इसकुल नदखुलु हाज़िहिल क़रियत, और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलु मिन्हा हैसु शिअ्तुम, जहाँ से चाहो खाओ। फिर दोबारा खाने की बात है, शहर के अंदर से खाओ, बाहर से खाओ, जहाँ से जी चाहे खाओ। और ये बस्ती कौन सी थी? बास कहते हैं बैतुल मक़दस और अरीहा का इलाका, यानी जरूशलम आप कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं लिया बस्ती का, क्योंकि असल मकसद बस्ती का नाम लेना नहीं, असल मकसद वो काम है जो आगे बताया जा रहा है। जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलु मिन्हा हैसु शिअ्तुम, खाओ जहाँ से तुम चाहो, रगदन इत्मीनान से, कोई रुकावट नहीं। वदखुलुल बाब सुज्जदन, बस एक काम करना कि दरवाजे से गुजरते हुए सर झुका के गुजरना। अब सुज्जदन से यहाँ मुराद आजजी है, यानी शुक्र गुजार होते हुए और आजजी के साथ दाखिल होना। वकूलू, और कहो, कुल की जमा है कूलू, हित्तुन बख्श दे, और जबान तुम्हारी इस्तग़फ़ार कर रही हो, कहना कि या अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों के बोझ उतार दे। नग़फ़िर लकुम ख़ताया, पिछली सारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी। वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को और ज़्यादा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हित्तुन को बदल दिया और मजाक उड़ाने लगे और कुछ और कहने लगे। बहरहाल इस आयत से हमें कुछ बातें पता चलती हैं, और वो क्या? नंबर एक, अल्लाह ने किसी मुल्क और शहर का खाना हराम नहीं किया कि हम ये कहें कि नहीं, ये तो फलां का मुल्क है लिहाजा यहाँ से कुछ ख़रीदना नहीं चाहिए और इसका बायकॉट करना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए और वो नहीं लेना चाहिए। नहीं, جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے نہیں، اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے۔ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں، تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے جسم کے تقاضوں کے ساتھ، اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ ملا، اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے، استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا۔ بدلہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حنتتن، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنتتن حنتتن حنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم، مذاق بنا لیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی सजा आ सकती है, और बास तकलीफें इंसान के अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं। हल्का सा रिकैप, आयत नंबर 49 से 59 तक, 49 से 59 तक, वह इज नज्जैना कुम मिन आलि फिरऔना। इस सबक में हमने इज की तकरार देखी, यानी इज को बार बार इस्तेमाल किया गया है। इज क्या माना होता है और ये किस मौके पर इस्तेमाल होता है, इसका लफ्जी माना क्या क्या है? जब, जबके, जिस वक्त और याद करो, उस गुरु का मुखफ्फ है, यानी अब्रीवेशन है एक तरह से। नज्जैनाकुम मिन आले फिरौना, आले फिरौन से मुराद कौन है? फिरौन के पैरोकार। आल में नंबर एक खानदान के लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ खानदान के लोग ही नहीं, बाज़ोकात फॉलोअर्स भी आते हैं। मसलन आप दुरुशी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, तो जब आले मुहम्मद कहते हैं तो क्या इससे मुराद सिर्फ आपके खानदान के लोग हैं या कोई और भी हैं? आपके फॉलोअर्स, आपसे मोहब्बत करने वाले, सिर्फ उम्मत में से होना काफी नहीं जब तक के इत्तबा ना हो, फॉलो ना किया जाए, साथ ना दिया जाए। यसूमूनकुम सुअल अजाब, वो तुमको बुरा अजाब चखाते थे। क्या था वो अजाब जिसकी तरफ इशारा है? एक माना तो यही है कि उसकी तफसील है युज़बिहून अबना अकुम, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि सूरत इब्राहिम में यसूमूना कुमसु अलाजाब व युज़बिहूना वाव के साथ उसको अलग कर दिया गया है, तो सूरत में फिर यसूमूना कुमसु अलाजाब में क्या चीजें शामिल हैं? आले फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था और उनसे सख्त मशक्कत का काम लेते थे, उनके कोई हुकूक न थे, उन पर हर तरह के जुल्म सितम होते थे। तो यहाँ मुराद सू अल अजाब में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। सू का लफ्सी माना क्या बताया था, ज़रा अपने नोट्स निकालिए और उसमें देखिए, हर वो चीज़ जो इंसान को गम में मुब्तला कर दे, खा इसमें इंसान की इज्जत का जाना हो, खा उसके माल व असबाब का जाना हो, ये किसी भी किस्म का नुकसान। तो बनी इसराइल जो कि पैगम्बरों की औलाद थी, जिन्हें दुनिया के एतबार से भी बहुत मकाम मिला था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से, एक वक्त आया कि वो जलील व ख़ार होकर रह गए, उनकी इज्जत व शान व शौकत भी जाती रही और उनका कोई मकाम नहीं था, उनके कोई हुकूक नहीं थे और उनसे जबरी मशक्क़त दी जाती थी। यहाँ इन सब चीज़ों की तरफ इशारा है। और उसके अलावा बड़ी बला क्या थी, युज़बिहून अबना अकुम व यस्तहयून निसा अकुम, ऐसा क्यों करते थे, लड़कों को मार देना और लड़कियों को छोड़ देना, इसकी क्या वजह थी? क्या इस आयत की ये तफसीर करना दुरुस्त होगी कि फिरौन को नजूमियों ने बताया था कि एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारा खात्मा कर देगा? क्यों, वजह क्या, नजूमियों की बात काबिल एतबार नहीं और हमारे दीन के खिलाफ जाती? उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो किसी अर्राफ के पास जाकर हाथ दिखाए और गैब की खबरें मालूम करे और नजूमियों पर यकीन करे, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती? किसी भी ऐसे शख्स के पास जाना कि जो गैब की खबर दे, दुरुस्त नहीं, पूछना ही दुरुस्त नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह सुबहान व तआला कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस देकर हारूत मारूत की तरह आजमाइश बना देते हैं, और बाज़ औक़ात वह ऐसी बातें करते हैं जो बसा औक़ात दुरुस्त भी साबित हो जाती, और लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर और ज़्यादा उनसे पूछते हैं और उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं, या जिन लोगों के ऊपर जिन आते हैं, ऐसे तमाम लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का ईमान जाता है। और हमें साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि अर्राफ, अर्राफ कहते हैं मारिफत देने वाले, यानी किसी ऐसी खबर देने वाले को, गैब की खबर बताने वाले के पास मत जाओ, भले पता भी हो कि फलां ऐसा करके बता देता है कुछ सच कुछ झूठ। जैसे काहिन, दौरे जाहिलियत में भी काहिन हुआ करते थे, और वो काहिन क्या करते थे, उनके जिन्नात के साथ ताल्लुक होते थे और वो जन्नात आसमान पे जाते और वहाँ से फरिश्तों की बातें कुछ ना कुछ सुन गुन करके नीचे आते और कुछ बताते, और उसमें वो एक में 100 झूठी बातें मिला के लोगों के अंदर मशहूर कर देते, क्योंकि एक बात कोई सच निकल आती तो वो 100 झूठी बातों को भी मान लेते। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये दरअसल अल्लाह सुबहान व तआला से इंसान का तवक्कुल कम करके बंदों के ऊपर और गैर अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती हैं, या उनकी तरफ इंसान को ले जाती हैं, जो कि एक तरह से शिर्क हो जाता है। या का नाबुदु का क्या मतलब है? सिर्फ तेरी इबादत, और उसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? या का नस्ताइन। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, मसलन कोई चीज खो गई या कोई मुसीबत आ गई, तो बजाय किसी नजूमी के पास जाने के क्या करना चाहिए? आप अल्लाह से दुआ मांगे। आप पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह ने पत्थर में से पानी निकाल दिया। तो अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह को छोड़कर बंदों की तरफ चल पड़ता है कि ये मेरी मुश्किल आसान कर देगा, तो इससे इंसान का ईमान और अकीदा कमजोर हो जाता है, और जो जो वो कमजोर होता है इंसान शैतान के ट्रैप में आ जाता है, और फिर बिल आखिर शैतान जो खुला दुश्मन है वो इंसान को शिर्क में मुबतला करके छोड़ता है। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। इससे कौन सी बात हमें मालूम होती है? कोई आजमाइश या कोई तकलीफ जो भी आती है वो दरअसल अल्लाह के इज़न से आती है। जब तक अल्लाह का इज़न ना हो, कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। व इस फरकना बिकुमुल बहरा व अंजैनाकुम व अगरकना आला फिरऊन व अंतुम तंजुरून। इस आयत से आपने क्या सबक सीखा? अल्लाह सुबहान व तआला ही की तरफ से आजमाइश आती है, और आजमाइश दूर कौन करता है? वो भी अल्लाह ही दूर करता है। और जब अल्लाह ताला किसी की तकलीफ दूर करना चाहे, तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि जो इंसान की अकल से बाला होते हैं। और किस तरह बनी इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में इन लोगों को किस तरह अल्लाह ने फिरौन के जुल्म और सितम से मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए निजात दी, और किस तरह समुंदर का रास्ता उनके लिए साफ कर दिया। अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था, लेकिन नस्बत अल्लाह ताला अपनी तरफ करते हैं। वह इस फर्क ना हमने फाड़ा था, हालांकि अल्लाह ताला तो जमीन पर नहीं आए थे रास्ता बनाने के लिए, सबब कौन बना था? मूसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ एक अहम बात याद रखिए कि जो कुछ भी इंसान को मिलता है उसमें कोई इंसान या कोई चीज सबब तो बन जाती है, लेकिन वो होता दरअसल अल्लाह ही की तरफ से है। यानी सबब इख्तियार करना, किसी जरिए को इख्तियार करना, कोई इसमें बुराई नहीं, लेकिन सबब पर भरोसा करके बैठ जाना कि बस इसी से ही काम चलेगा, ये गलत है। सबब इख्तियार करना चाहिए, लेकिन दिल में यकीन क्या होना चाहिए कि ये सबब भी दरअसल अल्लाह ने बनाया है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम व तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
2: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
3: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: The famous Green Dome in Medina, it was originally built out of wood in the 1200s before being painted green in 1837.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
7: DK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
10: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
11: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
12: Cheers.
10: Think. Don't drive tired.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे

0: मेरी जिंदगी में मेरे मकसद में जो मेरे साथ चला है उस मकसद के ऊपर मैं उसको दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, तो मैं दुनिया में छोटे मोटे अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हिसाब करूंगा, जैसे जज करता है। वो गॉड नहीं है कि उसको सब पता हो, लेकिन फैक्ट्स, फिगर्स, विटनेसेस, एविडेंसेस को सामने रख के अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो फैसला करता है। मैं भी करूंगा, इतना हक हमको रब ने दिया, उसको भी दिया है, तो मुझे भी दिया है कि मैं अपने फैसले करूं। इन्हीं फैसलों के ऊपर मेरी आखिरत जो है उसमें हिसाब किताब मेरे से होगा। तो इसको प्रैक्टिकली जी कर करके कोई बंदा अगर दिखा देगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वरना रियलिटी और जो हमारी बातें हैं वो मिल ही नहीं रही कहीं पे। तो इसलिए कोई किसी को सामने रख कर अपनी लाइफ ही नहीं बना पा रहा। वो समझते हैं ये सब जबानी कलामी है और ये जिंदगी है भाई, इसमें ऐसा ही होता है। तो जबानी कलामी और जिंदगी जब मिल जाएंगे, कन्वर्ज होंगे, तो ऑथेंटिसिटी निकलेगी। ऑथेंटिसिटी निकलेगी तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे उसके अंदर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। फिर खुद ब खुद चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी। मसल्स एक दिन में नहीं बनाना, आहिस्ता आहिस्ता मसल्स बनते हैं। इसी तरह सोच के मसल्स भी ऐसे ही बनते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल मसल्स भी ऐसे ही बनते हैं, रिलेशनशिप्स के मसल भी ऐसे ही बनते हैं। तो रोज थोड़ा थोड़ा करना है, ये ध्यान देंगे आप तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आई होप मैंने जिस तरह भी एक्सप्लेन किया है या हो गया है मुझसे, इसमें से दिमाग की खिड़कियाँ और प्लानिंग सारी की सारी आपके दिमाग में उतर आई।
1: बहुत ज्यादा सर जी, मैं लाइक देयर वाज ऑब्वियसली टू मच इंफॉर्मेशन समटाइम्स आई फील लाइक, बट इससे जो मुझे अभी बात, मैंने अभी एक और बात महसूस की है, मैं पता नहीं क्यों मैं महसूस करने वाला बंदा ज्यादा हूँ। तो जैसे पहले भी मैं शो पे आता था तो बात करता था आपसे, जब से आपने बात करी, जब हम किसी अपने से किसी को बेहतर देखते हैं तो मैं डर जाता था आपसे। मुझे ये डर नहीं था, लेकिन मुझे अपना अंदर जो दिखाई देता था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज यू हैव एवरीथिंग व्हाट आई वुड लाइक टू बी, व्हाट आई वांट टू बी एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ लाइक। और आज पहली दफा है कि मैं इतना खुल के, इतना विदाउट गेटिंग इमोशनल, आई कैन से दैट कि मैंने आज अच्छी तरह से सुना।
0: इसका मतलब
1: पहले जब मैं सुनता भी था,
0: हाँ, इसका मतलब पता है क्या है? स्ट्रेंथ जो हम आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रेंथ हम ढूंढ रहे थे, मसल्स ने स्ट्रेंथ, क्योंकि आपने डर डर के भी जाके जिम थोड़ा थोड़ा कर करके उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर दी, तो भी आप अगला वेट उठाने के काबिल हो गए। ये अंदर से आपको पता नहीं लग रहा था, बट इसके ऊपर काम हो रहा था, आपके अंदर चीजें जा रही थी। कोई चीज जाया नहीं होती, तो वो जब आपके अंदर जा रही थी, आप सोचते थे, समझते थे, उसके साथ आप कनेक्टेड लेकिन नहीं रहते थे। अब कनेक्टेड, जब जब कनेक्टेड हो गए, आपको क्या लगता है रब ने क्यों ये कॉन्सेप्ट बनाया है इबादत का? बार बार कनेक्ट क्यों करना है? दिन में 5 दफ़ा क्यों करना है? दिन में 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 1 दफ़ा क्यों कनेक्ट करना है मुख्तलिफ? वो कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल फोन को चार्जर में डालोगे तो चार्ज होगा, तो वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा। फिर उस पर उस फोन को यूज़ करोगे, कॉल्स के लिए करोगे, डाटा डाउनलोड करने के लिए करोगे, इन्फॉर्मेशन के लिए करोगे, आसानी के लिए यूज़ करोगे, फिर 2 दिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो कनेक्ट करोगे। और ये ही वो चीज़ें हैं, और रब नहीं चाहता कि आप परमानेंट कनेक्ट करके रहें। ये बात भी समझें आप, परमानेंट कर, अगर आप फ़ोन को परमानेंट हाई बैटरी पर लगाते रहोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो रब ने भी आपको इसलिए कहता है, समझें इस बात को, कि हर वक्त कनेक्शन उसके साथ लगाने के बजाय, दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के हिसाब किताब से आपका कनेक्शन हो रहा होगा। तो इसीलिए कहता है, जब दुनिया के काम कर लो, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, जो भी मामले आते हैं वो कर लो, तो फिर शाम को, रात के अंधेरे में, दिन को, किसी वक्त कनेक्ट करो और अपने अपनी इबादात में लग जाओ। क्या होगा उससे? आप फ्यूल्ड हो जाए, रीफ्यूल्ड हो जाएंगे दोबारा, और फिर आपको दुनिया के काम करने, हर वक्त यही काम नहीं करते रहना। एक साहबी थे बहुत बड़े, वो हर वक्त इतनी इबादत करते थे, बीमार रहने लग गए, घर के हुकूक नहीं पूरे हो रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उनको बुला के मना किया गया कि ये आप इस ये नहीं कर सकते, परमानेंट ये काम नहीं कर सकते आप, ये बीच में करने की चीज़ें हैं। और फिर दुनिया के काम में ये चीज़ें अप्लाई करके आप करते रहेंगे जी इबादत, उससे क्या होगा? आपने वो इबादत आपके काम में नज़र नहीं आ रही, रिश्तों में नज़र नहीं आ रही, आपके बिजनेस में नज़र नहीं आ रही, आपकी हैंडिंग टेकिंग डीलिंग में नज़र नहीं आ रही, तो अप्लाई कब करोगे? तो लेकर अप्लाई करना, कनेक्ट करना, फिर अप्लाई करना, फिर वापस आके कनेक्ट करना, ये सारा काम है। और इसी प्रोसेस के अंदर जो कंसिस्टेंट रहेगा उसके नंबर, जैसे उसकी फिजीक बनती है जिम जाने से, जो परमानेंट जाता रहता है, जो नहीं जाते उनकी उस हिसाब से फिजीक बनती है, जो कभी नहीं जाते उनके उस हिसाब से फिजीक बनती है या बिगड़ती है। तो एक्चुअल में चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बताने वालों ने, बनाने वालों ने, और या जिसने करके दिखाना था उसने अपने ज़माने में तो करके दिखा दिया, लेकिन उसके बाद के ज़मानों में वो एक देवमालाई कहानी बन गई, एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी बन गई बस, और सब उनको बाव डाउन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सीख कर थोड़ा सा भी अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सिर्फ करने होगा, ये जब करने लगेंगे चीज़ों को ना ढीला, मैं आपसे वो कहता हूँ ढीला छोड़ भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले ढीला छोड़ा, ढीला। और ये कि कभी कभी अक्सर लोग कहते हैं कि यू नो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी देर बाद आपको लगने लग जाता है कि ये बहुत हो गया, आपने ये दिमाग से छोड़ना ही, मतलब निकाल देना है कि जितना भी आ रहा है मैं ले सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, कोई मेरा दिमाग रब ने इसीलिए पैदा किया, मैं एहसास कर सकता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, मैं इस पर काम करूँगा। और कोई जल्दी, मैंने कभी कहा है आपको कुछ जल्दी करें? मैं इतना स्लो प्रोसेस करने वाला आदमी हूँ, मैं कहता हूँ जिम जाना है ना सिर्फ ट्रैक सूट खरीद लो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू द जिम, द एफर्ट दैट यू हैव डन गोइंग टूवर्ड्स द जिम, इक्विपमेंट खरीद लिया जो भी आपको चाहिए, आप जाके जिम में बैठ के हो सिर्फ, फिर शर्मिंदगी से दूसरों की देखा देखी, क्योंकि चले गए हो, काम हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया, फिर आगे करोगे, फिर उसके बाद दूसरों को देख के करोगे, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता उमंग पैदा होगी, दोस्ती होगी, ताल्लुक होगा, मामलात बनेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो कहते हैं जी पार्टनर नहीं मिलता, वहीं से मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे टैंगो करने का बहुत शौक है, या लंबाडा करने का, या फलां करने का बहुत शौक है, मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं। आप उस जगह जाओ जहाँ ये सब होता है, लोग खुद आपसे आके कह रहे होंगे कि मेरे साथ ढांडियां खेलें, फिर आपकी मर्जी खेलें ना खेलें, ठीक है, फिर बहाने होंगे, ओए हो डांडियां मेरी उंगली पे लग गया, अरे भाई कोई बात नहीं, लग जाती होती है कभी कभी, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। सो इस तरह आपने खुद को ढीला छोड़ के चांस दें, आप खुद को चांस दें, लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, किसी और को चांस मत दें, आप खुद को चांस दें, आप अपने डर से बात करें, ताल्लुक रखें, थोड़ा थोड़ा आगे जाएं। हमारा दोस्त है, उसके हम बिजनेस पे, उसके हम फाइनेंसिस पे फर्ज करो काम करना चाह रहे हैं, वो इतना उसने सारी जिंदगी एक ही तरीके से काम किया, वो डर के अपने फाइनेंसिस ही बेहतर नहीं करना चाहता, और वो इतने स्लो बेबी स्टेप ले रहा है कि मतलब बंदा हैरान हो जाए, बट ही इज अलाउड टू डू दैट, ये उसका प्रोसेस है, उसको और बहुत कुछ आता है, कमाल है वो अपनी चीज़ों में, बट इस काम में एक दफ़ा जब उसको फायदा हुआ, रिजल्ट आया, वो फिर खुद बहुत करता रहेगा। तो कभी कभी हाथ पांव पकड़ के साथ चलना पड़ता है, बाकी जिसने नहीं उड़ना उसने नहीं उड़ना, और कुछ अरसे के बाद आपने उसको छोड़ के किसी और को के साथ उड़ना है, क्योंकि खुद उड़ने वाला सिर्फ उड़ने के लिए पैदा हुआ है, उसका कमाल उड़ने में ही नजर आएगा, जमीन पे रेंगने में उसका काम नहीं है, वो किसी और का काम। तो डर किस चीज का, यहां तक आ गए हैं, कई दफा हमें लगता है हम इस काबिल नहीं थे, आ गए हैं, कोई हमें ले आया, अब आगे इससे भी बेहतर लेके जाएगा, जिसने यहां तक इतना कुछ दे दिया वो कैसे मान जाए कि वो आगे नहीं देगा। तो डर, और एक दिन डर किस बात का, एक दिन मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा, सबका होता रहता है, हमारा भी हो जाएगा, रिश्ते टूट जाते हैं, सबके टूटते हैं, हम कोई इधर ठेका लेके आए हुए हैं, हम अपना काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, कोशिश अच्छी करने की कोशिश करेंगे, दिल को, दिमाग को, नीयत को ठीक रखेंगे, चलता है चले, नहीं चलता कोई बात नहीं, उससे हम सीखेंगे, बेसिक्स कवर्ड होंगे, आगे उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, अगले लोगों में जो गलतियां की हैं हमने वो नहीं करेंगे, अगले अगर गलत लोग सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में जिंदगी इसीलिए थी, ये फिर लोगों ने इसको बना दिया पिजन हो, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, शादी ऐसी होती है फलां, और शादियां इसका लास्ट नेम मेरे साथ अच्छा लगेगा, फलां होगा, ये होगा। इन नीचपनों से बाहर निकलेंगे तो इंसान अपनी अजमत को ऊपर की तरफ, चीजों की तरफ लेके जाएगा, और इतना कुछ हो जाएगा कि डर को, जो बंदा बिलियनर होता है उसका आपको लगता है मिलियन का नुकसान हो जाए तो वो डर जाता है, नहीं, आम बंदे का मिलियन का हो, जिसके पास एक ही मिलियन हो तो उसकी रूह फना हो जाती है, ट्रू। तो
1: कैलकुलेट, मुझे ना सर ऐसे एक बात याद है, आखिरी बात करूंगा, मुझे मरने का डर पहले भी नहीं था, लेकिन आपने जब समझाया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद मरे आप वो, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने अभी क्या किया कि मुझे अभी भी नहीं है खौफ, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब वजन आया तो मैंने क्या किया, अपना जो फाइनेंसिस ठीक करके, जैसे मेरा घर था, घर मैंने बीवी और बच्चों के नाम कर दिया, जो मेरी सेविंग्स है उसको मैंने जो उनके नाम कर दिया, अगर मुझे कुछ हो दे आर सेट, सो उनको ये कागजी चक्करों में ना पड़ना पड़े,
0: हाँ जी,
1: तो मरने का मुझे
0: अब
1: कभी भी
0: देखें
1: खौफ
0: इससे
1: नहीं
0: ना,
1: रहा,
0: इससे इससे ना,
1: जीने का खौफ हो
0: हाँ ये जो है
1: रहा
0: ना, असल में जीने ही के लिए तो पैदा हो रहे थे, तो उसका क्यों खौफ हो रहा है? मुझे डर जो है ना
1: जी
0: मौत का नहीं है, जिए बगैर मर जाने का है। समझ रहे हो कि जिस काम के लिए
1: जी
0: मैं पैदा हुआ था, जिस काम के लिए मुझे क्रिएट किया गया था, उसी को करने से मैं गुरेजा हूं, उसी को करने से मैं डरा हुआ हूं, ये मुझको नहीं करना। और ये जितना आपने दूसरों के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, ये चीजें आपको डर से दूर कर रही हैं, आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में जिसको जो करना था बताना था बता चुका, जिसको जो देना था दे चुका, फैमिली में भी, दोस्तों में भी, और बाकी जो कुछ छोटी सी एक तो चीजें रह गई हैं वो किसको एग्जैक्टली पता है उसको कैसे होना है, और वो हो भी जाएगी, क्योंकि कभी कभी ये प्रोसेस लंबे हो जाते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, और आप इस बात से कि उस करने के बाद मेरे साथ कौन क्या करेगा के डर से भी बाहर निकल आए। सो आप बहुत ऊपर, स्टेप्स बहुत ठीक ठीक जा रहे हैं। इसी तरह
1: थैंक
0: आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद होती चली जा रही, और आपको सिंपल ये समझना है कि मुझे एफर्टलेस ई से जैसे मैं जॉब करता हूं वैसे ही मुझे कम्युनिकेट करना है, वैसे ही मुझे रिश्ते बनाने हैं, मुझे बस ये इसके पीछे की एफर्ट करते रहना है, और आई जस्ट हैव टू मेक इट सीम लाइक एफर्टलेस।
1: जी सर,
0: और इसके लिए हमने जो आजाद थॉट बनाई थी, इफ ओनली यू न्यू हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक समथिंग सीम एफर्टलेस, ठीक है, उसके पीछे बड़ा काम करना पड़ता है। आप वही काम कर रहे हो, तो काम करने वाला बंदा काम से नहीं डरता घबराता होता, और खुद पे काम करना जिसका इतना फायदा है, और रब पे हम ही हमसे ही काम करवाता रहता है। एक्चुअली ये सारी इबादत हम पे काम हो रहा है, हमारी सोच पे काम हो रहा है, हमारे जिस्म पे काम हो रहा है, हाँ, और रिश्तों में भी हमें बताया गया कि रिश्ते होने चाहिए, उसमें भी आप काम ही कर रहे होते हैं, ये सब काम ही है। लेकिन काम
1: जी सर,
0: रहकर काम करना ये असल काम है। ये समझे,
1: गया,
0: काम
1: हाँ
0: रहकर
1: जी, ये
0: काम
1: लगी
0: पे लगना और काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते रहना, ये असल काम है। इसका वीडियो बनना चाहिए
1: जी
0: था, ये दोबारा नहीं आएगा। कभी कभी तो हम कोई लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये याद करा देंगे।
1: निशाने पे लगी है सर जी
0: हाँ, ये अगर ये समझ गए ना हम कि ये कैसे होना है, और जितने लोगों को मैं गुस्सा करता हूँ, नाराज होता हूँ, सख्ती करता हूँ, वो सिर्फ मेरी वो जो काम होने से जो मुझे दूर करते हैं ना, इरिटेट करके या गुस्सा चढ़ा के या नाराज होके, मैं उस बैलेंस से मुझे बाहर जब निकालते हैं तो मैं गुस्सा करता हूँ कि मुझे बैलेंस से ना निकालो, मैं बड़ी मुश्किल से बैलेंस के अंदर रहना चाहता हूँ, ताकि यही बैलेंस में रहूँ मैं, और मुझे मसले बताएं, परेशानियां तकलीफें बताएं, मैं आपको सिर्फ बताता जाऊं और साथ साथ हल करते जाऊं और आगे
1: जी सर,
0: बढ़ूं।
1: थैंक
0: ठीक है,
1: यू सर
0: सो
1: जी,
0: ग्रेटफुल ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब आप सुन रहे थे हीरा सिंह जी को हमारे साथ, और कर रहे थे इन्जॉय और रिलेट कर रहे थे बहुत सारी बातों से इनकी, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए कैसे कैसे लोग कमाल कर रहे हैं जी, मेहरबान। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। आप लोग इतने हमतन गोश होके, यू आर ऑल ईयर्स लिसनिंग टू हीरा सिंह जी और उनकी प्यार भरी मजे मजे की बातें। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर
1: जी। सलाम अलैकुम आजाद जी।
0: जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बूथ चार्ट बनाने आई हैं आप, हैं जी?
1: हाँ जी, बूथे मिलेंगे ना सारे फिर इकट्ठे।
0: जी।
1: मैं सुन रही हूँ शुरू से एक्चुअली,
0: अच्छा
1: एंड
0: अच्छा
1: इट्स अ वंडरफुल यू नो शो,
0: जी
1: नॉलेज बहुत ज्यादा यू नो, और मुझे कई क्वेश्चंस बीच में आए, कई वो हुआ, क्योंकि हीरा सिंह ने आई थिंक ही हेल्प्ड एवरीबॉडी एल्स आल्सो asking all those things also, जो है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि हम जिंदगी में बहुत लेट सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। वाई दैट यू नो, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है, या
0: जी
1: हमारे में कूट कूट के ये डाला गया है कि तुम अपने आप को डाउट करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ना करो तुम अपने यू नो, यही तो। लेकिन जब लेटर एज में वो सारी चीजें वो होती हैं, तो देन यू आर लाइक यस, मुझे ये फीलिंग थी, मुझे ये कर लेना चाहिए था,
0: जी
1: लेकिन आई डिड नॉट डू दैट,
0: जी
1: एंड देन यू पे फॉर इट
2: in your later age.
0: देखें, जो हमारे बुजुर्ग थे ना, दे डिड नॉट नो मच, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड की डिवेलपमेंट के बारे में, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट के बारे में, उस एनवायरमेंट के अंदर बड़े होने वाली बहुत सारे लोग, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चरके और बहुत सारी ऐसी गलतियां हो गई उनसे, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, सोसाइटी पूरी की पूरी इवॉल्व कर रही थी.
2: सोसाइटी की बात है, हाँ जी, मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे इर्द गिर्द भी सारे जो लोग थे उन्होंने भी हमें यही फीलिंग दी.
0: जी, असल में ना प्रोडक्ट जो है ना, पेरेंट्स भी उस जमाने के, जो हमारे पेरेंट्स जिस जमाने में थे, वो भी सोसाइटी की सोच के प्रोडक्ट थे, ठीक है. अब दुख की बात ये है कि जो अगली जो पीढ़ी आई है, जिसमें पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस तरह वीडियोज़ नहीं थे, इस तरह इल्म इतना आम नहीं था, इस तरह जो चाइल्ड साइकोलॉजी, इस तरह साइकोलॉजिस्ट, यू नो, साइकियाट्रिस्ट, उधर कोई जाते थे तो लोग समझते हैं पगले हैं, हालांकि हर बंदे को होना चाहिए. अब इतना कुछ बदल गया है कि इस ज़माने में ये सब कुछ होने के बावजूद मैं जब अपने हम उम्र जो लोग हैं या जो हमसे बड़े हैं, वो इस ज़माने में रहते हैं, हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन सारी उनको मिल रही है, चेंजेस उन्होंने अपने ज़माने की देख रही हैं. दुख की बात यह है, वो उनसे भी बुरे हालात हैं उनके.
2: हाँ जी, नहीं, दैट्स इसी, ये वही है ना चीज़ के हम फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं. बिकॉज जिस तरह मैं अपने बेटे से कई दफ़ा बात करती थी, ही एम्पावर्ड मी अ लॉट रियली, एंड वो मुझे कहता है कि मॉम, गूगल इज़ देयर, मॉम there is so much information, there are, you know, you can watch things on YouTube, you don't, you have to just think out of your jo circle hai.
0: Haan ji, wo jo cycle jo hai na,
2: brain wave, aur cheezon ko bhi dekho,
0: haan ji,
2: unhe bhi socho jo hai.
0: Asal mein na uske liye conscious effort karni padti, wo hum kyun nahi karte is tarah ki conscious effort karni padti, aur conscious effort ka matlab ye hai jo purani brain ke andar wiring ho gayi hai उसके खिलाफ हमको कुछ नई चीज करनी है, और वो वेरी डिसकंफर्टिंग होती है.
2: क्योंकि देखें, पहले हमने लगाया हुआ, अगर एनिमल चैनल लगाया हुआ, प्लैनेट चैनल लगाया हुआ, तो जी वो मछलियां आ रही हैं, वो शेर आ रहे हैं, तो यू नो वी वर नॉट इवन पेइंग अटेंशन के व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे.
0: जी,
2: अब मैं उसके साथ जब बैठ के देखती हूँ तो मैं उसे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ फारूक बेटा, ये चीजें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इन चीजों के बारे में इस तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी.
0: जी, अब आप ये सोचें, जो कुछ आपने नहीं सोचा हुआ था ना, या जिन चीजों को आप नहीं जानती थी, उसकी वजह से आपकी वो जिंदगी बन गई जो बन गई, ठीक है
2: जी.
0: ले, अब जब ये चीजें हम जानते हैं तो इससे हमारी एक नई जिंदगी बननी चाहिए और डिफरेंट बननी चाहिए, क्योंकि अब हम ये जानते हैं तो इसको अप्लाई भी करना है कहीं.
2: That's correct, लेकिन आज ये डर कौन खत्म करेगा, वो जो है कि हम नया स्टेप लेने जब लेना चाहते हैं तो यू आर स्टिल अफ्रेड ऑफ अननोन.
0: मुझे ये बताएं, जब डॉक्टर के पास आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई कौन देता है आपको?
2: डॉक्टर देता है,
0: उसने दे दी, उसके बाद आपके पास दवाई घर में आ गई, अब दवाई कौन देता है आपको?
2: हम खुद लेते
0: हैं. डर भी हम खुद दूर करेंगे, ये भी हमारा ही मसला है, समझिए. तो अब समझिए, एक्चुअल में मसले बहुत मुश्किल नहीं होते, ये बाहर से कुछ नहीं आना है, ये सब अंदर से, ये जो जो इंतजार कर रहे हैं मसाया का, आप ही अपनी जिंदगी के मसीह, वो उन्होंने आना है जब आना है, लेकिन घर के मसले उन्होंने हल नहीं करने, फाइनेंशियल मसले उन्होंने हल नहीं करने, फैमिली के मसले उन्होंने हल नहीं करने, बच्चे जो पेरेंट्स के साथ लड़ झगड़ और परेशान हो रहे हैं या कर रहे हैं, या माँ बाप उनको कर रहे हैं या वो उनको कर रहे हैं, ये सारे मसले ऐसे ही रहेंगे आपके. ये मसले सॉल्व करने का मसीहा पैदा हो चुका है और वो आप हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आप अपने जहन पे, अपने जिस्म पे, अपने रूप पे काम करना आपका, हमारा काम है, दवाई लेना हमारा काम है, वरना बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, दर्द बढ़ता चला जाएगा. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे
3: पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहां पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज।
4: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
5: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
6: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
11: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
12: Join Imam Waz for a full hour each week where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
11: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
13: Every Friday at 5 p.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं,
3: ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Jo log apne pe kaam karte hain, unki emotional needs aahista aahista agar wo dhyan dein, to kam ho jati hain insaanon se. Aur سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریکگنیشن اور سیلف ایکچولائزیشن اسٹیج پہ یہ والی جو اموشنل نیڈز ہیں یہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یہ انسانوں کے بجائے مقصد سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں, یہ ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں. یہ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اموشن کا تعلق صرف ہمارا انسانوں سے ہے. بالکل, جب آپ رب کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اموشنز نہیں آتے, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, آپ اپنے آپ کو کنیکٹیڈ, گریٹفل, یا ایسا نہیں فیل کرتے کہ آج سارے کام کر لیے جس دن آپ کی عبادات پوری ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی ایموشنل کنیکشن ہے رب کے ساتھ. جب درد میں یاد آتا ہے وہ, تو ایموشنل کنیکشن ہے. جب آپ اس کو ریورٹ بیک کرتے ہیں, جب کوئی پریشانی تکلیف آ جاتی ہے, جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, آپ کیسے اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک انرجی آپ ادھر بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا, جب آپ کسی مقصد پہ ہوتے ہیں, اس مقصد میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کبھی رونا آتا ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی دکھ کے باوجود آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کتنی ایموشنل انرجی آپ یوز کر رہے ہیں مقصد کے لیے. لیکن کیونکہ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا, ہمیں لگتا ہے یہ ایموشنز ہمیں صرف لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہیں. رب کے ساتھ تعلق میں بھی ایموشنز ہیں, اپنے ساتھ تعلق میں. جیسے ہیرا سنگھ جی واز ٹیلنگ اس اباؤٹ بیٹنگ اپ ہمسیلف, تو اپنے ساتھ جو ان کا ایموشنل کنیکشن ہے, جب وہ چیز مسنگ ہوتی ہے یا بار بار ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے, تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کتنا ایموشنل انرجی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے آدمی اپنے ساتھ. تو اپنے ساتھ بھی آپ کی ایموشنل ٹاک چل رہی ہوتی ہے, رب کے ساتھ بھی آپ کا ایموشنل انٹریکشن چل رہا ہوتا ہے. ہم ہر چیز جن سے پیار کرتے ہیں, ہم ہر اس کام سے جس سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنا پیشن جس سے پیار کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن بنا ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ چھوٹتا ہے یا نکلتا ہے آپ کے ہاتھ سے یا اس میں نقصان ہوتا ہے, تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. بٹ انسان بیچارہ, کیونکہ اس نے دماغ استعمال نہیں کیا کبھی, تو اس کو لگتا ہے ایموشن کا صرف ایک مطلب ہے, محبت جس انسان سے میں نے کی اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ماں باپ کے ساتھ اگر میرا کچھ ایموشنل کنیکشن ہے, تو اس سے مجھے کیسے میرا انٹریکشن ہوا, یہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. بچے اگر ہیں تو وہ کیسے میرا, ان کے ساتھ جو میرا ایموشنل انٹریکشن ہے, یا جو ریسیپروکیشن آف انرجی ہے, یا جو بھی ٹرانسفر آف انرجی ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے. تو ہم کو یہ لگتا ہے ایموشنل, جیسے لاجیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, جیسے اسپرچوئل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, ایسے ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. جیسے فزیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. جب آپ ایموشنل اسٹیبلٹی کو جب سمجھ جاتے ہیں, اور یہ کبھی بھی نہیں آتی اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہو. ابھی جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کسی جگہ پہ آپ کو یہ نہیں ملیں گی. یہ اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا ایموشن کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ڈرین ہو رہا ہے. جیسے فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں, تو تمام لوگوں کا اس پروڈکٹ, اس سروس پہ دھیان ہے جو مل رہی ہیں, لیکن اس پلفریج پہ کسی کا دھیان نہیں ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے. اس ویسٹ کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے, اور اس ویسٹ سے کہیں ایسی کیمیکلز کسی ایسی جگہ تو نہیں جا رہی جہاں اور لوگوں کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے. تو یہ سب سمجھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ایموشنز اور ایموشنل ویسٹ دونوں کو ہینڈل کرنا, جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے انرجی لیتے ہیں, اس کے بعد ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا بھی آپ کا اپنا بندوبست ہے, بالکل اسی طرح ایموشنز بھی بالکل ایسا ہی روح کے اندر جسم میں جاتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں, پھر اس کا کچھ ویسٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ وہ آپ کا کام کرتے ہیں. مائٹوکونڈریا آپ کو جو انرجی چاہیے وہ بنا کے اس کو وہ دیتے ہیں, جو آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں اپنے اندر. انرجی فوڈ سے بھی آتی ہے, انرجی تھاٹ سے بھی آتی ہے, انرجی رشتوں سے بھی آتی ہے, انرجی مقصد پہ رہنے سے بھی آتی ہے, انرجی رب کے ساتھ تعلق سے بھی آتی ہے, وہ جو آپ کو چلا کے رکھتی ہے روز, ورنہ تو صبح کوئی اٹھے ہی نہ, دل ہی نہ چاہے. کئی لوگ اتنے نکمے ہوتے ہیں, ان کے لیے پیسے کمانے کا دل ہی نہیں چاہتا ان کی حرکتیں دیکھ کے سچ ان کی بے حرمتی چیزوں کو کرنے کی دیکھ کے, ان کا ناشکرا اور ان کا بوتھا دیکھ کے دل ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جی, तो पुराने ज़माने में जब औरतें बेचारी थक जाती थी, इमोशनल हो जाती थी, और जब उनको लगता था वेव आती थी इमोशनल, और उनका जो भी काम उन्होंने किया वो इतनी एफर्ट किया उसकी रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती थी, तो अपने मुंह पे ही थप्पड़ मार लिया करती थी, ठीक है, क्योंकि औलाद को या किसी और तक उनका हाथ पहुँचता नहीं था, तो कहती थी मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, खुद अपना ही मुँह पीट लेते थे। तो बिल्कुल इसी तरह हम उसमें बड़ी एनर्जी ज़ाया होती है, अपने आप की तड़प, अपना ज़ाया होना, अपनी एफर्ट एनर्जी सब वेस्ट होना, सब मुझे अब समझ आता है। तब नहीं समझ आता था, कुछ समझ नहीं आता था, हम समझते पागल हो गया, अगला पगलों वाली हरकतें कर रहे, घबराहट हो, लेकिन वो ये सब कुछ अब दिखता है, सब समझ आता है ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जिसको नहीं समझ आ रहा ना, वो कभी भी उसका इमोशनल वेस्ट इतना होगा, वो इमोशन दे दे के थक जाएंगे, लेकिन कहीं से स्टॉपेज नहीं करेंगे कि रुक जाए ये और इसको किसी और जगह इस्तेमाल करें। जैसे पैसा, वी वेस्ट आर गुड मनी आफ्टर आर बैड मनी इन कोट्स, नहीं करना। उसके बजाय जो गुड मनी है, जो गुड इमोशन है, गुड चीज़ें, उस पर ध्यान करना है, और उसके बजाय रेसिप्रोकेशन आपको कितनी चाहिए इस पर आपने ध्यान देना है। जहाँ तक इंसानों के बीच में, क्योंकि वापस आके फिर हमारा सब कुछ छोड़ने, जितना मर्जी मैं बता दूँ, पढ़ा दूँ, सिखा दूँ, समझा दूँ, करके दिखा दूँ, घूम फिर के आखिर में वही चीज़ आ जाएगी कि मेरा क्या, या मेरे ये जो दो चार रिश्ते हैं इसमें से जो मुझे चीज़ें इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल रेसिप्रोकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो उसमें आपको मैं बताऊं, जब आपकी कोई नाकदरी करता है ना, तो गौर से सुनिएगा, जब आपको लगता है कि मेरी किसी ने कदर नहीं की, मेरे टाइम की, मेरे इमोशन की, मेरी यू नो एनर्जी, किसी ने कदर नहीं की, और बेकदरी जब होती है तो आपको इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल किस्म की चोट लगती है, लेकिन आप उसमें आपका एक बहुत बड़ा कसूर है, कदर ना करवा सकना। क्यों नहीं कदर करवा सके आप, इसको सही करना, इसका एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। कैमरा है आपका बहुत आला क्वालिटी का, आगे आप महबूब की तस्वीर खींचना चाहते हैं कमाल किस्म की, लेकिन आउट ऑफ फोकस है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट में फ़ोटो खींच के और सारे बाद में ख़राब कर दे, उसके बाद कहना कपड़े ज़ाया, टाइम ज़ाया, ये ज़ाया हो गया, फलां हो गया, ओहो मैंने ये कर दिया। काम को सीखें कैमरे को, और उसके बाद उसके प्रॉपर लेंस को, दूर का, नज़दीक का, कौन सा लेंस, कैसे उसको फोकस करना है, ये जब तक नहीं सीखेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह इमोशंस को भी आपने फोकस करना है, किसको क्या देना है, कितना देना है, ये जिस दिन आप सीख लेंगे उस दिन, क्योंकि जितना, और अगर आप बहुत देना चाहते हैं, बहुत दयालु हैं, आपको बहुत कीड़ा है अजमत का, ठीक है जी, तो आपने 5% जो दे रहा है उसको 10% देना है, 5% वाले को 100 नहीं देना, क्योंकि 100 की नाकदरी, नाशुक्री, फिर उसकी रिजेंटमेंट, फिर गुस्सा, फिर बिटरनेस, फिर इंसानियत ऐसी है, दुनिया ऐसी है, रोग ऐसे हैं, रब ऐसा है, ये सारा वहाँ से स्टेम आउट करता है। ये कीड़ा जिसको होता है ना इलॉजिकल होने का या स्टूपिड होने का, ये फिर आपकी जान लेके जाता है। स्टूपिडिटी जो है ना इग्नोरेंस से आती है, इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, आप रब को कभी ये नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो स्टूपिड हूँ, बिल्कुल स्टूपिड नहीं है आप, ये ऐसे आपको किसी ने कह दिया है, ये आपने अपने दिमाग में कवर करने के लिए आप कहते हैं, ब्रेन भी स्टूपिड को बार बार कहता रहता है, तो वो भी समझते हैं हाँ जी ये स्टूपिड है, तो उसको आपको सबसे थका हुआ ऑप्शन देता है अपनी लाइफ का, ताकि आप स्टूपिड समझते हो खुद को, तो स्टूपिड ही रहो। ये रब के साथ मजाक है और बदतमीजी और बदतहजीबी है नेचर के साथ। आपको मोस्ट रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इंसान पैदा किया उसने, आप कहते हैं मैं स्टूपिड हूँ, मेरी तो हर चीज, कैसे स्टूपिड हैं आप? ये स्टूपिडिटी है कि आपने चॉइस कर लिया कि मैं स्टूपिड हूं। मैंने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, हम जिन जिन लोगों को स्टूपिड समझते थे वो सारे हमसे आगे हैं, या वो खुद समझते थे या उनको लोग समझते थे। चॉइसेस स्टूपिड होती हैं इंसान की, चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारी स्टूपिड होती हैं, चॉइस ऑफ रिलेशनशिप हमारे स्टूपिड होते हैं, चॉइस ऑफ एनवायरमेंट, चॉइस ऑफ जॉब्स हमारी स्टूपिड होती हैं। इंसान, आप स्टूपिड नहीं है, हमारी चॉइसेस स्टूपिड है, उसकी वजह से एक जिंदगी एक स्टूपिडिटी सी बन गई हमारी। तो इसमें आप रब के साथ इस तरह की बातें, रब कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो, मैं वक्त हूं, हम रब वक्त को कैसे कैसे लोग बददुआएं, बदतमीजियां, गालियां करते हैं, इब्ने आदम मुझे अजियत देता है जब वो वक्त को गाली देता है, तो वक्त वो है। तो बिल्कुल इसी तरह अपने आप को कोसते रहना, आप जो कुछ भी कहते हैं ना खुद को, वो आपके ब्रेन में जा रहा है, आपका ब्रेन उस हिसाब से आपको सर्व कर रहा है। आपने कभी देखा है, आप एक मुलाजिम के सामने, नौकर है हमारा दिमाग, उसको आप कहते रहते हैं, नौकर को आप कहते रहते हैं मैं स्टूपिड हूँ, मैं डम हूँ, मैं फला, आप चाहते हैं आप नौकर आपकी इज्जत करे, आपको बेस्ट सर्विस दे, या आपके साथ उससे भी आप सिंपथी चाहते हैं। और नौकर को तो पता लगे मेरा मालिक कमाल है, मेरा जो लीडर जो है वो, उसको इज्जत मिलती है, उसको मोहब्बत मिलती है, वो सरशारी में। और जिस मालिक का मैंने ये ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग आपके साथ ज़िंदगी में होते हैं, जिनका लीडर, जिनका बाप, जिनका भाई, जिनकी माँ, जिनकी बेटी किसी काबिल होते हैं ना, और वो लोग आपको सर्व अगर कर रहे हैं, और इवन घर का मुलाजिम भी, उस घर का प्राइम मिनिस्टर के घर के मुलाजिम की टोर देखी है आपने, साहब के बारे में वो बात कैसे करता है, साहब से वो कैसे बात करता है, इर्द गिर्द के लोग जब उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहता है, वो कितना फ़ख्र करता है कि मैं फलां प्राइम मिनिस्टर या फलां चीफ मिनिस्टर या फलां मिनिस्टर या फलां एक्टर या फलां आर्टिस्ट या फलां बंदे के घर पे काम करता हूँ। उसकी बात ही और होती है, वो मुलाजमों में बैठता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है, ही इज़ बिगर बेटर एंड एक्सेलेंट देन एवरीवन एल्स अराउंड हिम। सो ये होता, और जब तक आप उस प्रोडक्ट, यही चीज़ जब अगर आप मुलाजिम देख रहे हैं, आप थके हुए हैं, आप रोते रहते हैं, मुंह बसूरते रहते हैं, आंखों में आपके आंसू हैं, कभी इसको गिला, कभी उसको शिकवा, फलां, इस घर का मुलाजिम भी आपकी दिल से इज्जत नहीं करता, वो गुजारे लायक काम करेगा बेगार करके, बिल्कुल इसी तरह आपका ब्रेन भी, अगर आप उसको इस किस्म की बातें कहते रहेंगे, प्यार से कहना, मोहब्बत से कहना, लाड से कहना, किसी को कोई चीज़ सिखाते हुए कहना, ये सारी बातें और हैं, इनको आप पर्सनल नहीं ले सकते, ये समझना है आपको ज़िंदगी में। लेकिन जो चीज़ें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो काम है, जो आप चीज़ें करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने कमाल हैं, और कितनी किस हद तक आप जा सकते हैं। मेहरबान है, कुछ करते हैं उनसे बात। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
16: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं?
16: बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ये मैंने अक्सर नोट किया, जब मेरी आपसे मुलाकात हो जाती है और जब आप गाल पे लालियां देख लेती हैं तो अगले दिन आप कॉल करती हैं, या जब हम बच्चे बच्चे से लगते हैं उसके अलावा नहीं कॉल करती हैं?
16: हाँ नहीं करती हूँ, बिल्कुल सुनती हूँ ना आपको।
0: क्या सुनती हैं?
16: बस आपका शो सुनती हूँ, कभी समझ में आता, कभी पकाने में चली जाती हूँ, फिर देन आई कम बैक, सो आई मिस क्वाइट अ बिट।
0: आपको शो तो नहीं पकाता ना?
16: मुझे हाँ,
0: शो तो नहीं पकाता आपको?
16: जी
0: शो तो नहीं पकाता आपको?
16: शो नहीं पकाता,
0: बस फिर ठीक।
16: दिमाग कभी कभी बहुत अलर्ट हो जाता, कभी कभी फिर वो हो जाता, कंफ्यूज हो जाता कि वो हो।
0: ये इसलिए ना कि 80 साल तक अगर कोई बजा, या 70 साल या 60 साल तक जिम ना जाए, तो जब उसके हाथ में मैं छोटे से भी वेट पकड़ाऊंगा 5 पाउंड के, तो उन्होंने कहना ओहो ये तो बहुत प्रेशर है।
16: हाँ बिल्कुल, 80 साल के लोगों को इतना वजन नहीं उठाना चाहिए ना। हाँ, अगर वो आदी नहीं है तो,
0: अगर वो हाँ तो आदी होना चाहिए,
16: आदी
0: था?
16: नहीं है तो।
0: हाँ जी, अब आदी
16: जो, जो करते हुए आए हैं उनके लिए ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रही थी, दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं
0: जी।
16: अभी आप बात कर रहे थे कि बाज लोग ऐसे हैं कि तो मैं ये कह रही हूँ कि बाज लोग इतना काम करते हैं लेकिन उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, बल्कि लोग जो हैं उसको और भी यू नो उसको रन डाउन करते।
0: ठीक है,
16: तो क्यों ऐसा होता है? ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए कि तुम अगर प्रेज नहीं करे, वो नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को गिराओ तो नहीं ना।
0: दो बहुत दो तीन पॉइंट्स मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक है। एंड वेलकम बैक टू द शो। जनाब पॉइंट ये था कि जब लोग कोई एफर्ट करते हैं तो बजाय आप उनको अप्रीशिएट करें, आप उनके खिलाफ बात करते हैं या उनको आप डीग्रेड करते हैं या उनके एफर्ट की आप कदर नहीं करते, तो कम से कम इतना तो ना करें। देखें ये इसकी दो रीजंस हैं। एक मसला ये है कि जब हमने अपने जहन में ये सोच लिया, गौर से सुनिएगा इस बात को, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ये बात, जब तक आपने अपने जहन से ये बात नहीं निकाली कि मैं काम इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ये गलत सोचने का तरीका है। आपको एक काम मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात, मुझे एक जॉब मिली हुई है। देखें जब जॉब नहीं होती ना तो कोई बंदा नहीं सोचता मैं जब जॉब करूंगा तो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए होगी। उसको जॉब चाहिए होती है, वो मर रहा होता है जॉब के लिए। उसको किसी बंदे ने शादी करनी है ना, उसने नहीं कहता जब बीवी आएगी तो मुझे ऐसे खिलाएगी, ऐसे पहनाएगी, ऐसे फलां करेगी, मेरी फलां करेगी। वो कहे भाई मैंने शादी करनी है किसी भी तरह, सब कर रहे हैं, मेरी रह गई है, लोगों की शक्ल मैं अपनी नहीं दिखा पा रहा। इट्स ऑल अबाउट पीपल, ठीक है जी। उस वक्त वो कुछ नहीं सोच रहा होता, वो बाद में कहता है देख लेंगे, डील कर लेंगे, हो जाएगा, और फिर उनसे कुछ ना डील होता है ना वो देख सकते हैं किसी चीज़ को, ना खुद को आईने में, ना दूसरों को, ना रिश्ते को। तो ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने ये बात जब ज़िंदगी में सीखी कि मुझे अपना काम दिलो जान से करना है, और अगर मैं लोगों से अप्रिसिएशन चाहूँगा ना, तो लोग क्योंकि मेरी तरह सोचते नहीं हैं, मेरी तरह करते नहीं हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जब वो मेरी तरह सोचते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं मैं क्या प्रोग्रेस, मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ आपको, तो उनका ये सोचना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको पता है, देखिए मैं सिंगर हूँ ना, अगर मैं कभी भी, आवाम आपको दाद दे रही है, आगे बैठे हुए लोग आपको दाद दे रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ गुड नाइस, आप इसकी रेसिप्रोकेशन में और अच्छे सुर लगाएंगे, वजतारी हो जाएगा, कमाल कर देंगे, लेकिन आम बंदा जिसको म्यूज़िक की सुर की समझ नहीं है, वो सारा दिन बैठ के मेरी तारीफ़ें करता रहे या कई लोग करते रहें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मास्टर जो इस काम का है ना वो मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मुझे इनकरेजमेंट भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आम आदमी तो वैसे ही कह रहा होता है आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप बड़े अच्छे हैं, वहाँ कहते हैं जी आपका शो बहुत अच्छा है, कितने बजाते हैं आजकल ऐसे बंदे से क्या आपने एक्सपेक्ट करना कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उसको फ़र्क पड़ रहा है, आपको भी आहिस्ता सा समझ आ जाएगी इन बातों की। ये हमारी जो ख्वाहिश है ना, जब तक हम इस ख्वाहिश से बाहर नहीं, आप इस ख्वाहिश से आज़ाद हो जाए, जिस दिन आप इस ख्वाहिश से आज़ाद हो गए, आपको इतना अप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे कि आप अप्रिसिएशन से थक जाएंगे ये, और आप कहेंगे भाई कोई और बात करो, मैं जानता हूं लोगों को मेरी ज़िंदगी में होता है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं। पहले अपने पे काम करना है, फिर आएंगे उन लोगों की तरफ के जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। जो लोग अप्रिशिएट, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ के, जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, देखें लोग जो है ना, कम ज़र्फ लोग जो है ना, दोनों लोग गड़बड़ हैं, एक चापलूस जो आप डिज़र्व नहीं करते उसके बारे में आपकी तारीफ़ें करें, वो आपका लिमिट कर देते हैं आपको, आपको लगता है मैंने परफॉर्म कर लिया, बेस्ट कर लिया, एक्सेलेंस में मैं आ गया, मुझे और कुछ नहीं करना, बस बहुत हो गया, ये 2-4% के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे और कोई कमाल नहीं होगा, और फिर आप कहते रहेंगे, अब जो कुछ दिनों के बाद जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर आप रोना धोना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो इतना बढ़ा चढ़ा के वो बयान उन्होंने कर दिया, तो आप उसमें फ्लैटरी में आ गए और खाम खा आपको लोग कहते रहते हैं, आपका लेवल उधर ही रुक जाता है। कुछ लोग अच्छे से अच्छा आप काम करते हैं, वो कहते हैं जी आपने नहीं अच्छा किया, बुरा किया, अवॉइड करते हैं, ये लोग इनसिक्योर होते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं जो चीज़ आप दे रहे हैं इसके बदले आप कुछ मांग ना बैठे, इसके बदले कहीं आपको और कुछ ना देना पड़ जाए, या वो इतने छोटी सोच समझ के लोग होते हैं कि उनको नहीं पता, इस इतने कम अकल होते हैं, उनको नहीं पता कि अगर कोई औरत अच्छा खाना बनाती है और उस खाने की आप तारीफ कर लेंगे, तो वो औरत और अच्छा खाना बनाएगी, तो कौन खाएगा वो खाना, आप ही खाएंगे, आप ही के घर में अच्छा जायका बनेगा। बदबख्तो इतना सा तो समझ जाओ, किसी की तारीफ कर देने से अगर वो खुश होकर वो दोबारा उस चीज़ को बेहतर कर दे, हर वक्त अगर वो मांगते हैं तो उसको दिमाग का इलाज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये सब करना, कभी कभी तजदीद चीज़ों की करना उसको बार बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ अगर आपने किसी को कुछ चीज़ों में ठीक भी करना है, तो उसका भी यही तरीका है कि आप साथ साथ उनको ठीक कर लें चीज़ को, तो ये भी हम ही ने करना होता है, लेकिन हम नहीं करते, तो ऐसे कम ज़र्फ़ों से और फिर भी अगर आपने सर्विस उनको देनी है तो ज़रूर दें, लेकिन उनसे कुछ चाहें नहीं, कभी कभी जब वो दे देंगे तो चाहें तो उस दिन, मतलब आज बादलों में से चांद निकल आएगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा। अब ये जो दूसरे अगर लोग आपको ये तंग कर रहे हैं, वो सर्विस आप देने जाते हैं और वो नहीं लेते, और उसमें से कीड़े निकाल, सर्विस को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप फिर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में हर आदमी को वो काम देता हूँ जो वो करना चाहता है, और जो कहता कुछ है और करता कुछ है उसके ऊपर आई फॉल वेरी हैवी ऑन दैट पर्सन कि भाई आपने खुद ही कहा था, खुद ही आप कर भी नहीं सकते हो, तो जो काम आपका शौक है ना, बल्कि मैं उसको उसकी नेचर से अलाइन कर लेता हूँ। जो आदमी सोशल है उसको सोशल टाइप के काम देंगे, बाहर के काम देंगे, कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी उसको कम्युनिकेशन का काम देंगे, जो आदमी अकेले में या सुकून में या अलहदा से रहता है उसको उस किस्म का काम देंगे, जिस आदमी को म्यूज़िक या फ़न का शौक है, जिसको स्पोर्ट्स का शौक है, आपको उस किस्म का काम देंगे, ताकि उसको करने में उसको फिटी, हर चीज़ को सोच समझ के करना होता है। जो लोग थके हुए होते हैं या कोई काम नहीं करते, उनसे मैं डिफरेंटली बात करता हूँ, डिफरेंटली उनके साथ मेरा बिहेवियर है, उनसे काम करने या करवाने का मेरा टोटली और तरीकाकार है, और जो आदमी एक दफ़ा चीज़ को कहने पे कर देता है वो मेरी ज़िंदगी को इतना आसान कर देता है कि मैं उसके लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ और मैं हर वक्त उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसको और ज़्यादा देना चाहता हूँ कि इसका ये हक बनता है कि मुझे एफर्ट मेरी मेरा टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मेरा दिमाग नहीं ज़ाया कर रहा, मेरी ज़िंदगी नहीं ज़ाया कर रहा। और ये खुद से काम करता है, प्रोएक्टिव जो अप्रोच होती है, और अगर कोई गड़बड़ होता है तो बता देता है। ये इस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि लोग कई लोगों को समझ नहीं आती मैं उनसे क्यों इतना उनको टाइम देता हूँ, क्यों उनसे लंबी बात करता हूँ, क्यों उनके मसले हल करता रहता हूँ। इसलिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो काम मेरी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, और फिर भी उनको मैं वो काम देता हूँ जो उनकी नेचर, अगर आप किसी की नेचर के ख़िलाफ़ कुछ भी करेंगे, जितनी मर्ज़ी लोग आपसे मोहब्बत करें वो काम नहीं चलेगा, जितनी मर्ज़ी लोग आपकी इज्जत करें नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी नेचर वो चीज़ उनको करने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, थकावट होती है, तो वो नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। इसीलिए वो काम लेके फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों के अंदर। और एक और बात, कुछ लोगों को ये पहले ज़माने में भी था और हमेशा होता है कि जी मेरा उनसे रिश्ता इसलिए कि मैं उनको कोई काम वगैरह दे देता हूँ। मैं काम आपको इसलिए देता हूँ, या किसी आदमी को भी, छोटे को, बड़े को, मर्द को, औरत को, बुज़ुर्ग को, मैं काम इसलिए देता हूँ कि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहे, मेरा उनसे मैसेज चलता रहे, मेरी उनसे बात होती रहे, मेरा उनसे रिलेशनशिप चलता रहे। ये भी मेरा तरीका है ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, वरना जितना मैं बिज़ी होता हूँ या मेरा माइंड जितना बिज़ी होता है, रिश्ता पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा हाथ से। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कुछ, और वो काम मुझे ये लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हो इसलिए आपको दिया है, और उससे जो इंटरेक्शन होगा और उससे जो सिर्फ दो इंसानों में नॉर्मली अगर आप देखें तो एक दो चीज़ों की अगर ज़रूरत है फ़र्ज़ करो, वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपको बंदे का एहसास ही नहीं रहता, वो ज़रूरत कहीं और से भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपने सिर्फ उसको दी हुई है, तो उस बंदे का की जो इंपॉर्टेंस है लाइफ में वो हमेशा रहती है, किसी भी तरीके से ज़रूर रहती है। तो इससे भी रिश्ता कनेक्ट करने की हम इंसान कोशिश कर रहा होता है, बट इसके लिए दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिमाग समझते हैं आप? हाँ, वही जो हमने रख छोड़ा साइड पर, उस कुरान की तरह जिससे हम कभी कभी दुआ पढ़ लेते हैं या शादी करा के बेटी के सर से गुजार दे, सर के अंदर नहीं डालते, उस बेचारी की सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरती है। तो दिमाग भी उसी, दिमाग का कनेक्शन भी, दिमाग भी उसी ने बनाया जिसने आपको किताब भेजी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो दिमाग से कनेक्टेड होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसके रिज़ल्ट आएंगे। ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। केओस थ्योरी में भी सब नूर का मंबा है और ये नूर के सारे काम है, और नूर जितना आप कनेक्ट करेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी आसान होगी, और घूम फिर कर बात सारी की सारी वहीं आ जाएगी। और जब मुझे ये बात समझ आई कि जब सब कुछ घूम फिर के मुझे उसी के पास जाना है, मैं उसी को क्यों ना पकड़ लूँ डायरेक्टली, मैं जब सब का मालिक ही वो है तो मैं सोर्स में क्यों ना हाथ डाल दूँ, बजाय इससे मांगूँ, उससे, उसके बंदों से मांगूँ, मैं इससे करूं, उसके पीछे जाऊं, ऐसे करूं, मैं हलकान हो जाऊं, मैं सोर्स को ही क्यों ना पकड़ लूं जो सब कुछ देने लेने वाला है, बड़े से बड़ा काम भी और छोटे से छोटी चीज़ भी, उससे मांगते हैं और कोशिश हम करेंगे, और उसमें जब वो दे, क्योंकि उसने दिया है जो ऑल माइटी मैग्नानिमस ऑल नोइंग सब कुछ है, तो वो जब वो देगा तो उसमें बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। इंसान जब देगा तो वो इंसान जब भी देता है तो उसने कुछ लेना भी होता है, कुछ और मामलात भी होते हैं, दुनिया इंसान ऐसा ही होता है, दैट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मांगना सिर्फ और सिर्फ रब से है, उसको पाने के लिए इंसानों के साथ जो डीलिंग करनी है वो सही होनी चाहिए, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए, उसमें खुलूस ऑनेस्टी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें गिव एंड टेक जो किसी का बनता है वो होना चाहिए, सच के ऊपर बेस करके होनी चाहिए। सच के ऊपर बेस करके कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस चलाया जा सकता है। इसके जो इसके ऊपर चार शेर बिल्कुल सही बैठते हैं, हमने जितनी आज बातें की हैं, अगर ये चार शेर आप जब इनको गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा आज के शो का हक अदा हुआ। शो का हक अदा करने वाले हीरा सिंह जी हैं, मेहरबान लोग हैं, जितने भी आज हैदर जी आई, डॉक्टर साहब आई, तमाम लोगों ने मिलकर ये शो बनाया, और पता ही नहीं चला इन दो घंटों का, एनर्जी भी बहाल हो गई, कोई काम की बात भी आप लोगों तक, और कोई आर्काइव्स भी जो हैं जी लोगों तक पहुंच के, कम से कम आवाज़ ज़रूर पहुंच गई। हमारे कुछ टेक्निकल इशू जा रहे हैं स्टूडियो में, हम आजकल उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतर चीज़ें इसमें से निकलेंगी। बस आपने काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मुलाकात होती है आप तमाम लोगों से इंशाल्लाह अगले शो में। खुश रहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा।
3: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.